गुण एहो होर नाही कोए, ना को हुआ ना को होए। जेवड आप तेवड तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसारह ते कम जात, नानक नावे बाज सुनात। राग गुजरी महला चौथा, हार के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिर जन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्यावह संतोह जी सब दुख विसारन हारा।

हाँ तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना, जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना, हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मैं सुखवासी, से मुकत भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी, जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ।

पढ़ै बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर न कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निःचल करता सोई,

तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैटा साई, जो तो भावै सोई थीसी, जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सब नहीं त्याया, जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही मारे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, जिसनु तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब हुए, तुद बिन दूजा अवर न कोई, तू कर कर वेख जान है सोई, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरड़ै

का तह डूबी अले मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सती नहीं पढ़िया

तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करु प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु आप हाथ दै मुहि बचावहु सुखी बसै मोरु परवारा। सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिय सब बैरन को आ संगरिय।

पांश तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उवरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझू करे हो रक्षा, राख लिहो मुहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, तीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर

जिने आप सवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, शत्रन को पल मोह बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा तर्क तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत देह तर सब हूं, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंका निर्भका निर्लंब, आद नील अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा, ताकाओ कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के बिद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पुपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं भूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पहु संकर कैठा, शिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता, जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है, रच्छा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरि हो, ताकि ताप तनक मह हरि हो, रिद्ध सिद्ध कर मुँह सब होई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल वास्ते ताहि उबारा, जिन नर नाम तिहारु कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दैलहु उबारी, सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लेहु बचाई, खड़ग केत

सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कह हम एक न जाने हो। श्री यशपान कृपा तुम्हारी कर, मैं न कहूँ सब

राम कली महला तीजा, आनंद एको अंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सहज सेती, मन वजियां वादाइया, राग रतन परवार परिया, शब्द गावने आईया, शब्दोता गावो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना, सबना गल्ला सुमरत स्वामी।

सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहे आ पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहे आ पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवा थाल विच।

0: शासन कर दिया। बोलो जी
1: वाहेगुरु वाहेगुरु।
0: एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाच भगवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्या है फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास से हो सहाय अर्जुन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याग सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर आवैता है सब ताई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ताई हुए सहाय दसा पातशाह के पुत्र आत्मा स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पारदार दाते अंतर के खालसा से बोलो जी वाहेगुरु। गरीब नवाज आप जी के पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हटियां जापियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन छकिया देख चलाई ते वाही देख ढिड किया जिन्हें प्यार सत्यार की कमाई दते अंतर की बोलो जी वाहेगुरु। जिन्हा सिंघा सिंघनिया धर्म ये सी दिते बांध बांध कटवाए कोपरिया लुवाइया चरखड़िया चढ़े आर ने चढ़ाए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां की धर्म ने आ रहा से किसी तरीके दबाया तो ना जी कमाई दते अंतर की बोलो जी वाहेगुरु। गुरु आ रहे दाते अंतर की बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे नाम किताब है जित आमण का सदका धर्म सुख होगा जहां जहां गुरु खालसा साहब चरिया देखते की फतेह बिरद की पैज पद की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी की मुरबली बोलो जी वाहेगुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंडे बुंगे चुगो अटल धर्म क्या जयकार बोलो जी वाहेगुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहेगुरु। गुरु गरीब लोहाज पढ़ते सदा सहाज दार जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब से होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जो पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दीदार से सेवा संभाल दता अपने खालसा जी ने बख्शो हे न्योटिया की ओट गुरु न्यासरिया आसरे गुरु तान तान गुरु ग्रंथ दार दियो दोए कर जोड़ करो अरदास भावे तो आने रात हे गिरवाज जी आज जी के चरण कामना अरदास विचार जी आपने बख्शिश की है आदि चरना पितर गुरबाणी सुखम शांत संपूर्ण पाठ दिता इस वे संध्या समय जान के आदि चरना शोध दर रास्ता पाठ फिर कृपा करो भूइया भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी शोध के सचखंड प्रवान गुरबाणी का भाव सारिया संगत दिता करो जी अगो तो शोध से पितर बाणी विचार की बड़ बुद्धि बख्शिश करो गिरवाज इस खुशी में आप दिन बख्शिया दातों में पितर गुलाब साहब जी का तैयार करें दार आप जी भोग लाओ शीर प्रसाद शासक की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आज जा पितर नाम जप बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देही प्रदेह रखा बख्श करो जी गरीब नवाज कृपा कर दतार जी आज बख्शिया दाता की नगर चुट सेवा हो जाए प्रवान करनी आज चाहना सेवा कर रहे सारे टैली सिंगा सिंगड़िया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी करा बख्शो अच्छे सदा इस तरह अपने चाहना सेवा की भावना बख्शन का कृपा कर दतार मेहर करो अमृत वेद लैके दाते आई है साफ संगत जाल जी दर प्रवान करो घड़िया लेके लाओ संगत दाते तिर फुल पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु जी महाराज कृपा करो गुरु महाराज परमजीत सिंह दिल्ली वाले सच्चे पातशाह ने देव होता से तंदुरुस्ती वास्ते चाची करा वास्ते बेनती करते तार पिता जी आप चरण अरदास बेनती है गरीब महाराज समूह संगत वालों बेनती प्रवान करते तार परमजीत सिंह दिल्ली वाले तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो उसी की नाम दास बख्शो चाची करा कृपालता करो जी गुरु महाराज बेटी रोड़ी रोही कौर गरीब नवाज परिवार पहली बार लैके मत्था टकाने वास्ते आपके चरणों में हाजिर होने तार कृपा करो बख्शिश करनी करे सेवा परिवार बेअंत भाया सेवा प्रवानी प्रवान करनी गिरवाज बख्शिश करो बेटी रोही कौर तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो उसी की नाम की दाज विकार बची उची विद्या दाज बख्शिश करनी सारे परिवार चाटी कला करो परिवार की सदा शुभकामना पूरी करो सदा अपने चरणों सेवा की दाज बख्श करो गरीब नवाज कृपा करो जी आप अदाकार सेवा बेटा गुरजोत सिंह बहस पढ़ने यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तार पिता जी परिवार उन्होंने कामयाबी वास्तव मेहनत कर रहे मेहनत मैं लगा तार प्रवान करो गुरु बख्शे करो काका गुरजोत सिंह बहस तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आजू बख्शो उसी की नाम दार बच्चे उच्ची विद्या दान सीखो पढ़ाई की कामयाबी बख्शे करनी यूनिवर्सिटी जा रहे गुरु आज बच्चे चढ़ी कराए गुरु आज पढ़ने वास्ते बलम दाग बख्शो भावना दाल बख्शो तार मेहर करो परिवार की शुभकामना पूरी करें दर्द लाजपत रखो जी गुरु गरीब नवाज अनु सिंह के जन्मदिन के परिवार में मेहनत मैं पिता परिवार दार बख्श करो अनु सिंह तंदुरुस्ती बख्शो लंबी आयु बख्शो चाली का करो जी गुरु गरीब नवाज की दार मेहनत करो गुरु नवाज जी सिख पंथ ਖਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਸਵਾਗ ਪਿਆਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ ਚੰਨਾ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੁਆਨ ਫਜ਼ਲ ਪਾਲਦਾ ਕਰੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਆ ਦੂੜਦਾ ਕਰਨ ਬੈਠੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਣ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਭ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੁਕਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਓ ਦਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਹਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਹਦ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਘਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਸਭ ਕਰੋ ਘਰ ਜਵਾਦ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰਿਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕਾ ਮਾਹੀ ਬਖਸ਼ੋ ਬਦਰ ਗੁਣਾਮੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਬ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਦੇ ਛਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਾ ਜਮਤਾ ਵਾਸੀ ਆਗਾ ਬਖਸ਼ੋ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚੈਨਲ ਰਾਜ ਬਣਾਓ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰ ਸਿਵਾਲਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਦਸਾਰ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਦੀ ਕਰਾ ਤੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਗੁ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਦੇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਭੋਜ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੜੇ ਸਉਤਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ

साहिब जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी नाहौं जति सती नहीं पड़या मूरख मुगधा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरया विसर नाही दातार अपना नाम देहु गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो सतनाम

कोई गुरमुख बन जाए, गुरमुख जिन्नी बुझिया हर अमृत रखिया उतार, नाम रूपी अमृत गुरु तो मिलता है। अमृत अमृत ऐसी जो भी अमृत की गल सुनते हैं ना, साडे मन च एक आ जाता भी जिवें देवतियां दे राक्षसां दी लड़ाई हुई तो अमृत पेय पदार्थ है, क्योंकि असी भी जो दसम पातशाह जी ने अमृत का बाटा तैयार किया, अमृत पेय पदार्थ ही है, जल दे विच बनता है, पेय पदार्थ ही है। पर अमृत का मतलब है भी ओ वस्तु जिसकी प्राप्ति तो बाद मनुख अमर हो जाए, तो अमर होने का मतलब यह नहीं भी वह शरीर हजार सालों तक रहा है, अमृत होने का मतलब है वो मानसिकता दे विच जेड़ा मौत का भय है, मौत की गुलामी है, डर है, संसा है, वह अमृत की प्राप्ति दे नाल मौत दे भय तो मनुख मुक्त हो जाता है, वह मौत नू जित लेंदा है, इस करके वह अमृत का प्राप्ति वाला बन जाता है। अमृत अवलाखी वह है जिदे अंदरों मौत का भय निकल गया, तो जे अजे मौत का भय है फिर अमृत अवलाखी नहीं हो सकता। बड़ी वड्डी गुरु साहब जी ने रहमत की साडे ते, असी हुण इस चीज नू समझ नहीं रहे। अमृत लैण वाले, अमृत की दात प्राप्त करने वाले भी, जां असी कहीए भी जे उस अमृत का बाटा तैयार करने का जो सलाघा जो कार्य किए जाते हैं, सानू भी बड़ी सुचेतता दे नाल सावधानी नाल सोचना चाहिए, करना चाहिए कि अबलाखी धक्का नहीं, अबलाखी लभना पे चाहिए। असी यह ना सोचिए भी गिनती वधा लईए भी अज जे किसी थां ते अस्थान ते अमृत संचार होया ते कोई कहे जी देखो जी इस अस्थान ते इन्ने हजारां ने अमृत छकिया, तो हजार दो चार दिन बाद फिर होर ही कुछ बन जाते हैं। यह भाव है अभिलाखा तो बिना, दो मर्जी किसी को परोस दो, दो चार दी वाह वाह वास्ते गुरमुख बन जाए, वह सिख बन जाए, तो मुड़ के फिर कुछ भी ना लब्बे। इस करके अभिलाखी मौत तो जितन वाला ही अमृत नू प्राप्त कर सकता है, जिदे मौत क्योंकि गुरु साहब ने परखना ही की अमृत देन लग्या, पहला सिर मंगे, सिर मंगण का भाव है कि इन्हों अंदर भय जो है अपनत है, अपना आपा त्याग सकते हैं, जेड़ा अपना आपा नहीं छड़ सकता वह अमृत किवें प्राप्त कर सकता है, वह गुरु वाला किवें बन सकता है। गुरु ने अमृत देना है, वह मृत तो उपर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, पर उदा निशानी की है कि वह मौत तो भय पीत नहीं हुंदा, वह मौत नू जित लैंदा, अपनी मानसिकता विचों मौत का डर खत्म हो जाता है। शरीर तो मौत नहीं खत्म होनी, शरीर ते मौत का प्रभाव पैना ही पैना एक दिन, पर शरीर के उत्ते पैण तो पहला साडे मन ते किन्नी वारी पैंदा, हर रोज बंदा मौत तो किन्नी वारी डरदा है, भय पीत हुंदा है, बस आ डर जिहड़ा जिहदे अंदरों मुक गया समझ लो उन्हूं अमृत मिल गया, उन्हें नाम उन्हें अपने आप नूं अमर कर लिया, ते उहदे लई सब तो वड्डा अमृत का पेय पदार्थ की है, वह किहड़ी जुगती है, नाम कीर्ति वाहिगुरु का नाम। इस करके दतार जी ने अगे कृपा की, दतार पिता महाराज जी कहते हर अमृत पीवे है सदा रंग राते होमै तृष्णा मार, जेड़े वाहिगुरु के नाम रूपी अमृत नूं पींदे ने, कीर्ति करते ने, नाम के रंग विच रते जाते ने, होमै तृष्णा मार उन्हां दी प्यास बुझ जाती है। सुर नर मुनजन अमृत खोजदे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा किन्नी, सच्चा मन वसाया, सच्चा हिरदे विच वस गया, अमृत हर का नाम है, नाम ही अमृत है, अमृत ही नाम है, अमृत हर का नाम है, वर्ष है कृपा धार, वाहिगुरु की कृपा दे नाल वर्ष रहा। नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाही, भी गुरु साहब जी ने एक ही अमृत है वाहिगुरु का नाम, उस नाम नू ही जो असी अमृत का बाटा तैयार देखते हैं छकते हैं, वह भी नाम ही है, गुरु की कीर्ति ही, गुरु की बाणी ही पढ़िया जाता, शब्द का ही अमृत है, उसनू देन दे लई तैयार किया जाता है। एक धार्मिक परंपरा है, एक धार्मिक मर्यादा है कि हे भाई जेड़ा ये अमृत तेरे लबा नू लगेगा, इहदे ते गुरु की दृष्टि पई है, गुरु की बाणी पई है, ते समझ ये जेड़ा अमृत तू छक रहा ना, इस अमृत का कुंट ही तेरे अंदर है, ये तेरे लबा नू लगा के ये एहसास कराना भी इस अमृत का रस तू रोज मानना है। एक नहीं भी एक दिन अमृत छक लिया तो तू कह मैं अमृत वाला हो गया, अमृत वाला तू रोज ही अमृत छकना है, रोज ही छकन का अर्थ है उस बाणी का रस, नाम का रस तू रोज ही लेना। जो सिख की परिभाषा सी पढ़ते हैं वही की गई कि जेड़ा सिख
ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਲੱਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਰਸੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰੀ ਮੁਰਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੁਰਾਰ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਾਰ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਾ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਇਹ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਾਰੀ ਹੈ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦਾ ਕੁੰਟ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ, ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਚਿਰਨਜੀਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

साहिब जीओ मैं मूरख की केतक बात है ओट पराधी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भासना परियारे

नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो हम बारक तुमरे तारे जेहवा एक कवन गुन कहिए बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत नक नहीं लहिए रहाओ कोट पराग हमारे खंडो अनक विधि समझावो हमें अज्ञान अलप मत थोरी तुम आपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ कीर्तन सुहला सुहला राग गौड़ी दीप की महला पहला एको अंकार सत गुर प्रसाद जयकर कीरत आखिए करते का होए विचारो तित कर गावो सुहला सिवरियो सुजनहारो तुम गावो मेरे निरपहो का सुहेला वारी जित सोहले सदा सुख होए रहाओ नित नित जेड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कमल सुमार संबत साहा लिखिया मिल कर पाओ तेल देहो सजन असीसणिया जो होवे साहिब सिओ मेल कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सुमरिए नानक से

अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का इह सुआओ। आठ पहर प्रभ पेखु नेरा, मिटे अज्ञान बिनसय अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावह, मन इच्छे नानक फल पावह। हलत पलत दुए लेहो सवार, राम नाम अंतर उरतहार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया। मन तन नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पाओ जाए। सच वापार करो वापारी, दरगह निभाए खेप तुम्हारी। एक काटे कर को मन माहे, नानक बाहुर न आवै जाहे। किस ते दूर कहाँ को जाए, उबरै राखन हार ते आए। निरपाओ जपै सगल पाओ मिटाए, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटाए। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन को कोई न पौचन हार। सर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा। मत पूरी अमृत जाति दृष्ट, दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सो होत निहाल, ताके निकट न आवत काल। अमर पहे अमरा पद पाया, साध संग नानक हर तिहाया सलोक। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगाश। अष्टपदी संत संग अंतर प्रबडीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समिगरी एक सकट माहे, अनक रंग नाना दृष्टाए। नाउ निध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तहनाद, कहन न जाई अचर्ज विस्माद। तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक ते सजान सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहया भगवंत। तरन माहे आकाश पयाल, सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल। बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पाणी बैसंत्र माहे, चार कुंट दै दिसे समाए। तिस ते भिन्न नहीं को ठाओ, गुरप्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देख, ससियर सुर नखियत्र मैं एक। बाणी प्रभ की सब को बोलै, आप अडोल न कब हूं डोलै। सर्ब कलाकार खेलै खेल, मोल ना पाइय गुण अमोल। जात सर्ब ज्योत मैं जाति ज्योत, धार रहे स्वामी ओत पोत। गुरप्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं एहो विसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुनै शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिस किय रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, करण करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावै ता करे बिसथार, तिस भावै ता एक ओंकार। अनक कला लखी न जाए, जिस भावै तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिय दूर, आपे आप भरपूर। अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्व भूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखनहारा। सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सब कै मद अलिप तोर है, जो किश कहना सो आपे का है। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे तां लए समाए। इस ते होए सुना ही बुरा, उरै कहो किने कछु करा। आप भला करतूत अतनी की, आपे जाने अपने जी की। आप साच तहरी सब साच, ओत पोत आपन संग राच। ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए तां सोजी पाए।
ਤਿਸਕਾ ਕੀ ਆਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਨ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ। ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ

अष्टपदी। पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। आस अनित प्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करो। साध संग अग्न सागर तरहो, हर तन के पर लेहो पंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चितवाओ नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम सलोक साध के बचन, अमलीक लाल एह रतन, सुनत कमावत हो तो उधार, आप तरह लोक निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महांत कह माथे, नानक उदरे तिन कह साथे। सरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर पए सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन। सुप्रसन्न पए गुरुदेव, पूरन होए सेवक की सेव। आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निभी खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सो तिन धान। सर्व इच्छा ताकि पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते ऊच पाए अस्थान, बाहूर न होवै आवन जान। हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए। खेम सांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान।

समंतरसी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख पहने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग में ताकी गत होए, गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटाए, संत कृपा ते जम ते छुटाए, जाकै मस्तक करम प्रभ पाए, साध सरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ देहे तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिनसे पै भरम, साध नाम निर्मलता के कर्म, सब ते ऊचता की शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी, सब ते ऊचता की शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

वह जानिए सब आपे सुचियार, थापिया ना जाए कीता ना हुए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावी गुणी निदान, गावी है सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए, गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहा समाई, गुर ईश्वर गुर गोरख वर्मा गुर पार्वती माई, जे हो जाना अखा नाही कहना कथन न जाई, गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, तीर्थ नावा जित सपावा बिन पाने के नाय करी, जेती सिर ठुपाई वेका विन कर्मा के मिले लई, मत विच रतन जवाहर मानिक जेक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई, जे जुग चारे आर जा होर सुनी होए, नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोई, चंगा ना उर खाए कह जस कीरत जगले, जे तिस नदर न आवई तवात न पुछे के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे, तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे, सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै धरत धवल आकाश, सुनै दीप लो पाताल सुनै पोहे न सकै काल, नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नाश, सुनै ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनै मुख साला हनुमंद, सुनै जोग जुगत तन भेद सुनै शास्त्र सिमृत वेद, नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नाश, सुनै सत संतोख ज्ञान सुनै अठसठ का इसनान, सुनै पढ़ पढ़ पाव है मान सुनै लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का ना, सुनै सरा गुणा के गाह सुनै सेख पीर पातशाह, सुनै अंधे पावै राह सुनै हाथ होवै सुबाहु, नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए जे को कह पिछे पछताए, कागद कलम न लिखन हार मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाए।

न नानक भवै न भिख। ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पाव है दर गहमान। पंचे सो है दर राजान पंचा का गुरे इख्तियार। जे को कह करे विचार करते कह करने नहीं सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। जिको बुझे हुए सुचियार तबले ऊपर किता पार। धरती होर परै होर होर तिस्ते पार तले कवन जोर। जी जात रंगा के नाम सबना लिखिया बुड़ी कलाम। इहो लिखा लिख जाने कोए लिखा लिखिया किता होए। किता तान सुअल हो रूप केती दात जाने कौन कूत। किता बसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरिया। कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार। जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार। असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार। कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम कोर। असंख अमर कर जाहि जोर असंख गल वड़ा त्या कुमाहे। असंख पापी पाप कर जाहि असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे। असंख मलेश मल पखाहे असंख निंदक सिर करह पार। नानक नीच कह विचार वारिया न जावै एक वार। जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव अगम अगम संख लो। असंख है सिर भार हुए अखरी नाम अखरी शाला। अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण बा अखरा सिर संजोग वखार। जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फरमाए तिव ते पाहे। जेता कीता तेता नाउ विण नावै नाही कुथाउ। कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार। जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। भरिए हथ पैर तन देह पानी धोतै उतर सुखे। मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए उतोए। भरिए मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग। उन्नी पापी आखण नाही कर कर करना लिख लै जाहु। आपे बीज आपे ही काहु नानक हुक्मी आवो जाहु। तीरथ तप दया दत्त दान जेको पावै तिलका मान। सुनया मनया मन कीता पाहु अंतरगत तीरथ मल नाहु। सब गुण तेरे मैं नाही कोई बिन गुण कीते भगत न होए। स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार। कवन सिरुती माहु कवन जित हुआ आकार। वेल न पाया पंडती जे हुवै लेख पुराण। वक्त न पायो कादिया जे लिखण लेख कुरान। थित वार ना जोगी जाने रुत माहु न कोई। जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई। किव करे आखा किव सा लाही क्यों वरनी किव जाना। नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवै। नानक जे को आपो जाने अगै गया ना सो।

साधन इनाद अनाहत जुग जुगे कुवेश। एक कामाई जुगत वे आई तिन चेले परवार, एक संसारी एक भंडारी कलाए दी बाण। जिव तिस भावै

वाक् पातशाही दसवीं छपै छंत्व प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जाति अर पात नहन जिहे रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश मितोज कही जय कोट इंद्र इंद्रा साहे साहान गनि जय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत त्वय सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रया छंद नमस्तुंग काले नमस्तुंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग भेखे नमस्तंग लेखे नमस्तंग काये नमस्तंग जाये नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग नामे नमस्तंग ठामे नमस्तंग कर्मंग नमस्तंग धर्मंग नमस्तंग नामंग नमस्तंग तामंग नमस्तंग जीते नमस्तंग पीते नमस्तंग बाहे नमस्तंग ताहे नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे नमस्तंग छेदे नमस्तंग गादे नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग पारे नमस्तंग सुवेकै नमस्तंग निकै नमस्तंग भूते नमस्तंग जूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्परमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्पेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमस्तंग सुवेकै नमस्तंग निकै नमस्तंग भूते नमस्तंग जूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्परमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्पेशे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्धूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग थापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग गाहे नमस्तंग बाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग सर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सुजोगे नमस्तंग रंगे नमस्तंग पंगे नमस्तंग गम्मे नमस्तस्तरम्मे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग जाते नमस्तंग पाते नमस्तंग बजबे नमस्तस्तजबे अदेशंग अदेशे नमस्तंग पेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वकापे नमो सर्वतापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तदेवै नमस्तंग भेवै नमस्तंग जन्मे नमस्तंग सुबनमे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वभंगे नमो कालकाले नमस्तस्तदयाले नमस्तंग वरणे नमस्तंग मरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वतन्दे नमो सत्वंदे नमस्तंग निर्शाके नमस्तंग निर्वाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्तरागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी चंत्व प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अदेह है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निर्सीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अभा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिरेक है भुजंग प्रयाचंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदानी नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाते नृसंगी प्रमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे
नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ती विभूते कलंकं बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र बाणे नमो वस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता भेखी अपरमी अभोगी अभुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तुंग स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं करुणासी अनूपे अरूपे समस्तु निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अदो उर्ध अर्धं अगंग ओघहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग अचेती अपेती अनामंग कामंग समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेराजूर चाचरी छंद जले हैं तले हैं पीत हैं अपी हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रचंद अगाते अबाते अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ती निदाने नमस्तुं इंद्रनाथे नमस्तुं परमाते नमस्तुंग गंजे नमस्तुंग पंजे नमस्तुंग काले नमस्तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृष्यं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अकिज्जे अपिज्जे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदयसिद्धं निवासी चरपटचन्त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूवाल छंत्व प्रसाद आद रूपनाद मूरत जौन पुरखा पार सर्वमान त्रिमान देव पेवाद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जत्र जत्र विराज ही अवतूत रूप रिशाल नाम ठाम न जात जाक रूप रंग न रेक आद पुरुष उदार मूर्त जौन आदशेक देश और न पेश जाक रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैलो अनुराग नाम कामहीन बेकत ताम हूँ नह जाहे सर्वमान सर्वत्रमान सदैव मान तताहे एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेल अनंत को फिर एक दे पेव न जाने जे भेद और कतेव रूप रंग न जात पात सु जाने के जेव तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र मक चक्र बकर फिर चतर चक मानी पुरतीन लोक चौदह की बिकह जग जापी जे जाप वा देवनाद मूर्त थाप्यो सब जे थाप परम रूप नित मूर्त पूर्ण पुरखा पार सर्वेश्वर चिव सुयम भवगणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सुपरम रहत अभूत लख अपेश अंग राग न रंग जाकै जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुख दाय काम आप रूप अमीक अनुष्ठ एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन भंग नात्मेक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व अंता सर्व तेन पे एक सर्व शास्त्र न जाने जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाके नित भक्त नित कूट सिमृत प्राण शास्त्र नया वही वो चित मत पार छंतवा प्रसाद गुणगण उदार महिमा पार असन भंग उपमा नंग अनुभव प्रकाश निश्चिन सा जान बाहु सान साहु राजान राज पानन पान देवान देव महान इंद्रन इंद्र बालन बाल रंकान रंक कालन काल
अनुभूतांगा बापंगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्युत प्रचंड मितगत अखंड आलिश्य कर्मादृश्य धर्म सर्वा परना डंडन भाड्य चाचरी छंत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्नामे अकामे कुजंग प्रयाचंद चतुर्चक्र कर्ता चतुर्चक्र हर्ता चतुर्चक्र दानी चतुर्चक्र जानी चतुर्चक्र वर्ती चतुर्चक्र भरती चतुर्चक्र पाली चतुर्चक्र काली चतुर्चक्र पासी चतुर्चक्र वासी चतुर्चक्र मान्य चतुर्चक्र दान्य चाचरी चंद न सूत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय दिशय दृश्य गृश्य भगवती चंद्व प्रसाद कथते या चिज देशय किया भिज पेशय किया गंज कर्म किया भंज भरमय किया भिज लुकै किया दित सुकै के अवतूत वर्ण के विभूत करण के राजंग प्रभाह के धर्मंग तुझा है के असुख वर्ण के सर्वा अपर्ण कि जगतंग कृति है कि छत्रंग छत्री के वर्मंग स्वरूप है कि अनुभव अनुप है कि आद अधिव है कि आप अपिव है कि चित्रंग बहीन है कि कै अधीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह पाक वे है कि गह भूल गह वह कि फूल गुना है कि साह न साह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राज करी मैं कि कर्मंग करी मैं कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र गान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पावण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भिष है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भिष है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज्य के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र दृश्य है के सर्वत्र पिष है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र ताप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है कि सर्वंग कली में कि परमंग फही में कि अकल आला में कि साहिब कला में कि हुसन वजू है तमामुल रजू है हमें सुलसला में सलीखत मुदा में गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम में रुजुअल निदान है हरिबुल अजीम में रजाय की यकीन है निकुल तरंग है भेद है भंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तु पराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव समस्तुल सलाम है सदैव काम है निर्वाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाध रूप है अनाध स्वरूप है अनंगी अनाम मित्र भंगी त्रिकाम मित्र वर्गंग त्रिभाध्य अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागी सुसर्वानुरागी त्रिपुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है कि नरकंग प्रणाश है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव प्रभा है विपुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेक है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है तंद है अबंध है भक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अदिख है अलेख है अपेक है अटा है अगाह है संभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग युक्ता सर्वंग मुक्ता रसावल चंत्व प्रसाद नमो नर्क नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्वाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न चात न मात न जात न पात निरसाकं शरीक अमितो अमीक सदैव प्रभा है अजय है अजय है भगवती चंत्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमीसुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुस्न चिराग है
کہ کامل کریم ہے کہ رازق رحیم ہے کہ روزی دہند ہے کہ رازق رہند ہے کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے غنیم الخراج ہیں غریب النواج ہیں حریف السکن ہے ہراس الفکن ہے کلنکنگ پرناس ہیں سمست النواس ہے اگنج الغنیم ہے رضائق رحیم ہے سمست الجواں ہے کہ صاحب کراہ کے نرکنگ پرناس ہیں بحث النواس ہیں کہ سرب الگوان ہیں ہمیش الروان ہیں تمام التمیج ہیں سمست العزیز ہیں پرم پرمیش ہیں سمست العدیش ہیں عدیش العلیق ہیں ہمیش الاپیق ہیں جمین الجما ہے امی کل ماں ہے کریم الکمال ہے کہ ضرورت جمال ہے کہ اچلنگ پرکاش ہے کہ متو سباس ہے کہ عجب سروپ ہے کہ متو بے پوت ہے کہ متو پسا ہے کہ آتم پربا ہے کہ اچلنگ انگ ہے کہ متو اپنگ ہے مت پار چنتو پرساد منمن پرنام گنگن مدام ارور اگنج ہر نر پر پنج ان

जल तल मुदाम अंचे जे अंग आसन भंग उपमा पार गत मितुदार जल तल मंड दिस स्वपांड जल तल महंत दिस बेअंत अनुपवनाश त्रितर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकार आद कथनीय नाद कल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात अजिज नात अनझंज गात अनरंज बात अन टुट भंडारण डट पारा डीठ धर्मत ठीठ कर मन ब्रन अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतव प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलकंडन है मैमंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कलकारण है सर्वभारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंड से कलखंड से परते पर है करुणा कर है अजपा जप है तप है तप है कृता कृत है मृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है कृता कृत है धरणी त्रित है मितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है मृता मृत है अजबा कृत है मृता मृत है नर नायक है कलकायक है विषम पर है करुणालय है नृप नायक है सर्पायक है पापंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है भुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो वृंद वृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संसांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कला कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग विपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आसासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चांदा जय अलय अभय अभय अभू अजू अनाश अकाश अगांज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे प्रमाथे अजूनी अमूनी नराग नरंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रया छंद नमस्तुल प्रणामी समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामी समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनिमे हरियंग करियंग करिमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते

सभी जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबीर बाज बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण हुए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम काबो। आप हाथ दे मोहे बचाओ, सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिये। सब वैरन को आसंगरिये, पूर्ण हुए हमारी आशा। तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें चाट कोई अवर न त्याऊं। जो वर चाऊं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है। चुन चुन सूत्र हमारे मारी है, आप हाथ है मुझे वरी है। मरण काल का त्रास निवरी है, पूजो सदा हमारे पच्छा। श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा, राख ले हो मोय रखन हारे। साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता। तुम हो पुरी चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा। काल पाए शिव जीव अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव की यो। वेद राज ब्रह्मा ज्योति यो, जमन काल सब लोक सुवारा। नमस्कार है ताहे हमारा, जमन काल सब जगत बनायो। देव दै जचने उपजायो, आदंते कह अवतारा। सुई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी। सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो। सत्रन को फल मुँह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पहचानत, चीटी ते कुंचरे अस्थूला। सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी, एक एक के पीर पछाने। काट काट के पट पट की जाने, जब उद करक करा करतारा। प्रजा तर तब दे अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ। तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन सिर सब तारे। आप अपने बूझ उचारे, तुम सभी ते रहत निरालम। जानत भेद भेद अरालम, निरंका निर्भका निर्लंब। आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा। जाको भेव न पावत भेदा, ताको कृपाहन अनुमानत। महामूढ़ कछ भेद न जानत, मां देव को कहत सदा शिव। निरंकार का चीनत ने पेव, आप अपनी बुध है जीती। वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाय पसारा। के पिसजा प्रथम संसारा, एक कै रूप अनूप स्वरूपा। रंग पयो राव कई पूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी। उत्पुज कान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवे बैठा। कहूं सिमट पे शंकर कैठा, शिगरी सेठ दिखाए चम। पवा जुगा स्वरूप स्वयं, पवा वृक्षा मेरी तुम करो। सिख उबार सिख सुंदर हो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता। सकल मलेश करो रन काता, जे आस तुझ तब सरनी परे। तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे। तिनके तुम संकट सवटारे, जो कल को एक बार ते है। ताके काल निकट नह है, रक्षा होय ताहि सब काला। दुष्ट अरिष्टर तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहिने हरे हो। ताके ताप तनक मैं हरे हो, रित सिद्ध कर्मो सब हुई। दुष्ट चाच वस कह न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा। काल फास ते ताय बारा, जिन नर नाम तिहारो का। दारद दुष्ट दुख तेरा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी। आप हाथ दे लेहो उबारी, सर्व ठौर मोह सहाई। दुष्ट दोख ते लिहु बचाई, कृपा करी हम पर जगमाता। ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किल विक सकल देह को हरता। दुष्ट दोख इनको छय करता, श्री अस्तु जप भय दयाला। पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछत फल पावे सुई। दुख न तिसे व्यापत कोई, अड़ेल सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई। सुनै मूड चित लाई चतुरताया वई, दुख दर्द भौ निकट न तिन्नर के रह। हो जो या की एक बार, चौपाई को कह चौपाई। संबत सत्रह सहस पनी जय, अर्सह सुन तीन कही जय। पहादुर सुधी अष्टमी रवारा, तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा। सुवैया
पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै गो भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्यो। दोहरा

चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रहा है, देख देख पते बिरद की पैज।

साधना मारी है, यह काले कलान में ना उपचारी है, ऐसी कला न खेड़ी जिधर के गया हारी है, बड़े आत्म में विचार के विचारी है, मुंह चले सो

कृपा न सुख कने कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा पर सगल समग्री तुरा सुतर तारी तुम ते हो सो आगे।

डहाव अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैन हो डिठी कूड़ कपट अहंकार रिझाना नाम सुनत जन बिछू डसाना माया कारण सद ही चूरे मन मुख कबह न उस्तत करे निर्भउ निरंकार दातार किस स्यों प्रीत न करे गवार सब साहा सिर साचा साहु वे मोहताज पूरा पात साहु मोह मगन लपट्यो भ्रम गिरहा नानक तरिये तेरी मेहर राम कली महला पंजवा रैन दिन सुजपो हर नाओ आगे दरगह पावो थाओ सदा आनंद न हो भी सोग कबहू न व्यापै हो मैं रोग खोजो संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा परम गत पाव है हर सिमर प्राणी रहाओ गन मिन देखो सगल विचार नाम बिना को सके न तार सगल उपाव न चाले संग भवजल तरिये प्रभ कै रंग देही धोए न उतरे मैल हौमै व्यापै दुबिधा फैल हर हर औखद जो जन खाए ताका रोग सगल मिट जाए

ठाऊ राव। जप जप जीवा तेरा नाऊ, आगह दरगह पावों ठाऊ। दुख अंधेरा मन ते जाए, दुर्मत बिनसै राचै हर नाय। चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गुरपूरे की निर्मल रीत। पाओ भागा निरपाओ मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै। कूट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा धन लाहे। तोट न आवै अखुट भंडार, नानक भगत सोह है हर द्वार। राम कली महला पंजवा। रतन जवे हर नाम, सत संतोख ज्ञान। सुख सहज दया का पोता, हर भगता हवाले होता।

आओ, कीर्तन निर्मूल कहीरा, आनंद गुणी गहीरा, अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी, सुन समाद गुफा तह आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तह बासन, भगत संग प्रभ गोष्ट करत, तह हरख न सोग न जन्म न मरत, हर कृपा जिसे आप दिवाया, साध संग तिन हर धन पाया, दयाल पुरख नानक अरदास, हर मेरी वर्तन हर मेरी रास, राम कली महला पंजवां।

परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत अपनी गत आप जानै सुन सुन अवर वखानै रहाउ संकरा नहीं जानै भेव खोजत हारे।

किछु न जानौ कैसा कर्म ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे तुझ बिन दूजा अवर न कोई भूल है चूक है प्रभ तेरे रहाओ रिद्ध न बुद्ध

सुन सुन जीवो मन इहो विश्राम, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम। तू अगणित जी का दाता, जिस है जनाव है तिन तू जाता। जो उपायो तिस तेरी आस, सगल अराध है।

राम कली महला पंजवा रखनहार दयाल कोट भव खंडे निमक ख्याल सगल अराध जंत मिलिए प्रभ गुर मिल मंत जीयन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी कट कट राता मेरा प्रभु रहाओ।

हे आनंद, तारण तरन हर शरण, जीवन रूप हर चरण, संतन के प्राण आधार, ऊंचे ते ऊंच अपार।

फल पाए। वो सावधान अपने गुरु स्यों, आसा मनसा पूर्ण होवै, पावे सगल निदान गुरु स्यों रहाओ। दूजा नहीं जाने कोए, सत गुर निरंजन सोए, मानुख का कर रूप न जान, मिली निमाणी मान, गुर की हर टेक टिकाए, अवर आशा सब लाहे, हर का नाम मांग निदान, ता दरगह पावह मान, गुर का

किसह अराध सदा सुख होए, काहे भ्रम भ्रमहै बेगाने, नाम बिना किछ काम न आवै, मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहा, जो जो करै सोई मान लेहु, बिन माने रल होवै खेहे, तिसका भाणा लागै मीठा, गुर प्रसाद विरले मन उठा, वे प्रवाहु अगुचर आप, आठ पहर मन का कौ जाप, जिस चिते आए बिनसै दुखा, हलत पलत तेरा ऊजल मुखा, कौन कौन उदरे गुण गाए, गणन न जाई कीम न पाए, बूढ़त लोह साध संग तरै, नानक जिसह प्राप्त करै, राम कली महल्ला पंजवां।

ठाई। रहाउ जगन्नाथ जगजीवन माधो, पौ भंजन हृद माहे आराधो। ऋषिकेश गोपाल गोविंद पूरण सर्वत्र मुकंद।

जानते सब न से गोपाल को जस गाओ प्राणी अकथ कथा साची प्रभ पूरन ज्योति ज्योत समानी रहाओ तृष्णा भूख सब नासी संत प्रसाद जपया अविनाशी।

प्रिय दिन राती साध संग कर मन की प्रीत राव। जन्म बिहानो अहंकार अरवाद तृप्त न आवे बिखिया साध। भरमत भरमत महा दुख पाया तरी न जाई तुत्तर माया। काम न आवे सुकार कमावे आप बीज आपे ही खावे। राखण को दूसर नहीं कोए तो निस्तर जो कृपा होए। पतित पुनीत प्रभ तेरो नाम अपने दास को की जय दान।

क्रोध मद सद ही झूरे करै विकार जी अरे कहताई काफुल संग न तसुआ जाई काम धरत तू अनिक चल जानै कौटी कौटी कौ खाक सिर छानै जिन दिया तिसै न चेतै मूल मिथ्या लोभ न

राम कली महला पंजवा राजा राम की शरणाए निर्भव भये गोविंद गुण गावत साध संग दुख जाय राव जाके राम वसै मन मारी सो जन दुत्तर पेखत नाही सगले काज सुवारे अपने हर हर नाम रसन नित जपने जिसके मस्तक हाथ गुर तरै सो दास अदेशा का ही करै जन्म मरण की चूकी कान पूरे गुरु ऊपर कुर्बान गुर परमेश्वर भेट निहाल सो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिस कृपा करे साध संग सो भव जल करे अमृत पीवो साध प्यारे मुख उजल साचे दरबारे अनद करहु तज

माटी कौ जल दह दिस त्यागै, ऊपर चरण तलै आकाश, घट मै सिंध कियो परका परगास, ऐसा समरथ हर जीव आप, निमख न बिसरे जी भगतन कै, आठ पहर मनता कौ जाप रहाओ। प्रथमे माखन पाछै दूध, मैलू कीनू साबण सूध,

विदेही दिसै, सगले साज करत जगदीशै, ठगनहार अन ठगदा ठागै, बिन वखर फिर उठ लागै, संत सभा मिल करो बखियानु, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोई, नानक ताकि परम गत होए, राम कली महल्ला पंजवा, जोत

नित नानक चितवै सच अरदास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो प्यार भावना श्रद्धा सहित हर रोज सतगुरु जी की अमृत बाणी के श्री सहज पाठ नाल जुड़ते हो। गुरु कृपा करे जितनिया भी संगतां ने हाजरियां भरिया हैं गुरु चरणा विच बैठ के, घरां विच बैठ के सतगुरु जी सभना की हाजरी दर प्रवान करन, दरों करो नाम दान गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके निवाजन जी अगाध बोध बाणी पढ़दियां होईयां भुल्लां की खिमा कर देनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

और मेरे बुजुर्ग प्रोफेसर रणजीत सिंह जी और नीलम साहब बैठे ने सारे गुणी जानो तुसी कीर्तनिया दे उते सतगुर ने सानू गुरबाणी गायन दा आदेश कीता है, उपदेश कीता। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। असी बाणी नू प्रधान रख के जो भी गल करनी है उस प्रथाए ही

गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप जी का शुक्र है कि जुगो जुगो अटाल साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की पावन हजूरी दे विच आप सब ने सानू असीस प्रदान की है। प्रबंधकों के भी शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने यह अवसर दिता। आप सब नू कुटान कोट मुबारक है गुरु अंगद पातशाह जी के प्रकाश पुरब दिया। बहुत अच्छा सबब बनता है नई ते कीर्तनी उही चुनीदा शब्द गा के अपनी हाजरी लगवा देंगे ने। सो बहुत अच्छा इन्होंने प्रबंध सिरजिया है कि सारे गुरु साहबान की बाणी, और असी चाहांगे कि इस तरह ही अगर भगत साहबान की बाणी और बाकी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दा भी गायन इस तरह हुंदा रहे ते दूसरियां कम्युनिटीज भी साडे नाल जुड़नगियां, और 1430 पन्नियां दे विच्चों सारी बाणी दा असी हौली हौली जिहड़ा गायन है शब्द रूप दे विच अपने मन विच वसावांगे, गायन करांगे, कीर्तन करांगे। कीर्तन भक्ति है कल युग में है कीर्तन प्रधाना, और गुण गोविंद गाव हो सब हरजन राग रतन रसना अलाप। बड़ी खुशी है कि आने वाले सितंबर दे विच शायद इन्होंने प्रोग्राम लिखा है कि गुरमत संगीत दरबार भी सजणगे, होर भी गुरमत संगीत दे कीर्तन दे प्रोग्राम इत्थों हुंदे रहिंदे ने। इसलिए असीं बड़े शुक्रगुजार हाँ। साडियां भुल्लां ना चितारना, खिमा करना, असीस देना, फतेह दी सांझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरपुरब है नी ढिल्ली फतेह ना बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: वो सही है।
1: हाँ मुझे चला के देखना मैं यार।
0: नवा प्रोजेक्टर कितने है जो नवा आयो
1: भाई ता है
0: ये नवा रोड़ी है
1: और
0: इधर पेड़
1: अंदर जरा पिया की है जल्दी
0: गुरु जी उधर का अभी लाया वा रात न लगे
1: आहो करना की है कुछ हो नहीं सकता यार मतलब क्वेश्चन क्यों आया है कुछ नहीं हो सकता ए चेंज करना पैना वीर जी लगूंगे टाइम ए इकती रख दरबार नहीं पता यार की है नहीं विजिबिलिटी अभी एलईडी लगूगा इतने नहीं चलना हूं
2: फोटो रह जाती होनी बाकी गुरुद्वारे की बड़ी साफ है साफ
1: है
2: जेड़ा बंदा कभी उल्टा जब तुम पिछे बैठे हो
0: मार्जिन तो बराबर उपर थले
1: हले सर एलईडी तो एलईडी तो चलाओगे उनकी क्लियरिटी अलग होगी वो ज्यादा होगी थोड़ी पहली बार गल हाल तो बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है हाल बड़ा है इतने बह के बेचते बंद इतने कि लेंथ बहुत ज्यादा
2: साइकिल अलखा भी थोड़ी
1: अजकल अजकल टेंशन इन्नी होगी करना

0: ज्यादा है,
1: बहुत ज्यादा हो गया,
0: बहुत ज्यादा है,
1: बहुत ज्यादा हो गया ना।
0: ऊपर लेवल थर्ड लेवल अलग सेम कर दो,
1: सेम